जिने आप सवारी सेवकण को सब गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जावे उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावे आ

सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करहो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे।

जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तू न छुटै निकट न जाइयो दूत श्लोक महला पंजवा मन में चित्त वो चित्त बनी उद्यम करो उठ नीत।

जमते नहीं छुटै। संत के दुखन सुभ सजाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा तेहीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जय करे नान, संत संग नंदक पीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए, संत के दुखन तरह ज्यों करमाए। संतन के दुखन ते सनाह में जलै, संत के दुखन सब कुछ चलै। संत के दुखन ते सजाए, संत के दुखन नीचन छाए। संत दुखी का था को नाहे नान, संत भावे तो विगत पाए।

ना ही कुछ कोई सरार मुझे कुछ होए आपे बिना आपे दाना गैर कबीर गिर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध रे की चानी पाओ नानक के मन एहो अन राओ मनसा पूर्ण साना जोग जो कर पाया सोई।

बिस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेसर की गत जाने सो सत गुर जिसरे दे हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सरदा जी का दाता आठ पै पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्मे जन जन्मे पार ब्रह्म एक आप नहीं कुछ भरम सह सियाण पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेकत पनीत परसत चन गत।

जीत हैं, अपीत हैं, त्रिमाण हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, जन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, गंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, नृभूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नृसरीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अक्रम हैं, अप्रम हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भौणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी प्रमाथे, नमो पाण भाने, नमो माण माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पाण भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पाण पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे, समस्ति विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे, नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो योग योगेश्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इस्तिस्ते, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अधो उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरंग प्रोषपालंग, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग, अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग, समस्तो प्राजी समस्तास्त धामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेस हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्त्वंग निर्नाथे, नमस्त्वंग प्रमाथे, नमस्त्वंग गंजे, नमस्त्वंग पंजे, नमस्त्वंग काले, नमस्त्वंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृसंग, नमो सर्वकृसंग, नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी, जरपट छंद त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग भाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रूआल छंद त्वा प्रसाद, आदरूपनाद मूरत अजौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल, जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल।

मत गोर मत गोर मत ध्यान गोर मत गोर मत गोर मत ध्यान वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते तुमरी गत मित तुम ही जानी।

प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन आकी गावे बंगली पुन असलेखी की भई बारी ए भैरो की पांचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगालम मधमाधव गावहे ललित बिलावल गावहे आपनी आपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावहे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापे संग रागनी पांचो थापे गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खट औपौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नर संग अष्ट सुत उठे तान कलोल ता गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पंचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आह बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे।